0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ते एकता विभाग पर लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसके कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उन विभागों में से कुछ के बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग पर गौर करें। अपने नाम के अनुरूप ख्रिस्ती एकता विभाग का काम कातिक कलीसिया के अंदर एक सच्चे ख्रिस्ती एकता की भावना को बढ़ाना है और ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाने के लिए दूसरी कलीसियाओं एवं ख्रिस्ती समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होना है। ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाला विभाग उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है जो दूसरे ख्रिस्तीय कलीसियाओं और समुदायों के साथ भाईचारा के रिश्तों, सहयोग और धार्मिक बातचीत के द्वारा ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कूट कोच हैं और सचिव महाथमदस फ्लेबियो पाचे। अन्य कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों के साथ संबंधों को दो अनुभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, पूर्वी अनुभाग और पश्चिमी अनुभाग। पूर्वी अनुभाग बिजेंटाइन परंपरा की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं और पूर्वी रीति की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ साथ पूर्व की अर्मेनियाई कलीसिया के लिए है और पश्चिमी अनुभाग पश्चिम की अलग अलग कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के लिए है। ख्रिस्तीय एकता विभाग का इतिहास 5 जून 1960 को शुरू हुआ था, जब संत पापा जॉन 23वें ने वैटिकन द्वितीय महासभा की तैयारी के लिए एक कमीशन के रूप में ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने हेतु सचिवालय का निर्माण किया था। इससे कातिक कलीसिया के ख्रिस्तीय एकता आंदोलन में आधिकारिक रूप से शामिल होने की शुरुआत हुई। सचिवालय ने महासभा के सामने ख्रिस्तीय एकता, गैर ख्रिस्तीय धर्मों और धार्मिक आजादी पर दस्तावेज तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत भी किए और धर्म सैद्धांतिक कमीशन के साथ मिलकर दिव्य प्रकाशना पर धर्म सिद्धांत का संविधान प्रस्तुत किया। 1966 में वैटिकन द्वितीय महासभा समाप्त होने के बाद संत पापा पॉल 6वें ने ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय को वैटिकन की स्थायी निकाय के रूप में मान्यता दी। उसी साल कलीसिया के विश्व परिषद एवं ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय ने मिलकर पहली बार ख्रिस्तीय एकता सप्ताह के लिए प्रार्थना तैयार करने का फैसला किया। 1988 में प्रेरित संविधान पास्टर बोनस के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सचिवालय को ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए परमधम पीठे परिषद में बदल दिया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के साथ संत पापा फ्रांसिस ने इसका नाम बदलकर ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग कर दिया। जैसा कि प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवंजेलियम में बताया गया है, विभाग का काम काते कलीसिया के अंदर और दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ रिश्तों में ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाना है। विभाग द्वितीय वैटिकन महासभा एवं महासभा के बाद ख्रिस्ती एकता पर संत पापाओं की धर्म शिक्षाओं को लागू करती है और ख्रिस्ती एकता की गतिविधियों को निर्देशित, समन्वित एवं विकसित करने के लिए उनकी सही व्याख्या सुनिश्चित करती है। यह ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह रोम में परमाध्यक्ष कार्यालय के दूसरे संस्थानों, वैटिकन से जुड़े कार्यालयों और दूसरी कलीसियाओं तथा कलीसियाई समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता प्रयासों को समन्वित करती है। विभाग दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ संबंध स्थापित करती और पहले पोप से सवाल पूछती और एकता को बढ़ावा देने के लिए ई शास्त्रीय बातचीत एवं चर्चा को बढ़ावा देती है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न ख्रिस्ती एकता सभाओं में भाग लेने के लिए ई शास्त्रीय वार्ता के कातिक सदस्यों, पर्यवेक्षकों और प्रतिनिधियों को चुने और कातिक कलीसिया की महत्वपूर्ण सभाओं एवं कार्यक्रमों में दूसरी कलीसियाओं और समुदाय के पर्यवेक्षकों या प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। विभाग में यहूदी धर्म के साथ धार्मिक संबंधों के लिए कमीशन भी शामिल है, जिससे कैथोलिक एवं यहूदियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। कार्डिनल कोच याद करते हैं कि पिछले 60 सालों में ख्रिस्तियों के बीच वार्ता ने हमें इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करने में मदद की है। उदाहरण के लिए वे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ ख्रिस्त शास्त्र की घोषणा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने 1500 साल के विवाद को खत्म कर दिया। सबसे खास बात यह है कि ख्रिस्ते अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि ख्रिस्त में भाई बहन मानते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2022 में ख्रिस्ती एकता महासभा में अपना भाषण देते हुए आगे बढ़ने और साथ चलने की अपील की थी। यह सच है कि ख्रिस्ती एकता काम बहुत जरूरी है और हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम एकता के रास्ते पर चलने का इंतजार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये शास्त्री एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते। पोप फ्रांसिस ने आगे कहा, एक महान ऑर्थोडॉक्स ये शास्त्री ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें पता है कि ये शास्त्री कब तक सहमत होंगे। जवाब में उन्होंने कहा, अंतिम न्याय के एक दिन बाद, अर्थात पूर्ण सहमति मुश्किल है। लेकिन इस बीच संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम भाइयों की तरह चलें, मिलकर प्रार्थना करें, उदारता के कार्य करें, सच्चाई की तलाश करें और यह भाईचारा सभी के लिए है। इस तरह ख्रिस्ती एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस तरह ख्रिस्ती एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने का प्रोत्साहन देता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ती एकता विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की ममता। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओ, परिवार में बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, पर कभी कभी पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार की देखरेख बच्चों की परवरिश का भार माता के जिम्मे आता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। नौकरी ना मिलने पर वो घर घर बर्तन मांझ कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती और परिवार चलाती हैं। बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। उनमें दुख सहने और धैर्य रखने की शक्ति होती है। वे माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। पर अगर परिवार में माता की अचानक मृत्यु हो जाए तो साधारणतः बच्चों के जीवन में माता का स्थान पिता नहीं ले पाता है। अगर संयुक्त परिवार हो और घर में दादा दादी हों तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, अन्यथा पिता अपने बच्चों के लिए नई माँ ले आता है। हाँ, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो बखूबी माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। पर अगर पिता को शराब की लत लग जाए, नौकरी ना हो, ऐसे में बच्चों की परवरिश की आप कल्पना कर सकते हैं। आज की नाटिका में बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित ममता को अपनी पड़ोसन अमन की माँ का प्यार और मार्गदर्शन मिल जाए तो ममता जैसी अनेकों युवतियों की जिंदगी संवर जाएगी। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका माँ की ममता।
1: रो क्या रही है, चला चलिए यहाँ से, आना मत दोबारा यहाँ। घर की इज्जत नीलाम कर रही है, तुझे खाने को नहीं मिलता है? इंसान दो रोटी ही खाता है, अमीर गरीब सब यही खाते हैं, दाल रोटी। फिर भी लोगों को और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
2: अरे क्या हुआ बेटी, मैं 2-3 दिन से बाहर खड़े होकर तुम्हें रोते हुए देखती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
3: आंटी, आप नहीं आई हो ना इस फ्लैट में, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रोती हूँ।
2: अरे पर बताओ तो सही, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा, बड़ी तकलीफ होती है मुझे।
3: आंटी, इस फ्लैट में पहले जो स्टूडेंट रहते थे ना, वो इसी कारण से चले गए।
2: हाँ हाँ, रो मत बेटा, आराम से।
3: पापा की वजह से रोज शराब पीकर आते हैं और चिल्ला चोट करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते। अब आप ही बताओ आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ?
2: रो मत बेटा, रो मत। एक बात बता, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा, घर में और कोई है कि नहीं?
3: नहीं आंटी, घर में और कोई नहीं है, बस पापा और मैं। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, उन्हें कैंसर था, तब मैं बहुत छोटी थी। बस बस माँ की धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में है आंटी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये देखिए मेरी माँ की तस्वीर, बहुत प्यारी थी मेरी माँ।
2: हाँ बेटा, माँ बड़ी प्यारी होती है, पर तुम्हारे पापा को तुमसे क्या परेशानी है, तुम्हें तो खूब प्यार से रखना चाहिए उन्हें।
3: परेशानी ये है आंटी कि मैं डांस करती हूँ और उन्हें मेरा नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं होटल में डांस करती हूँ।
2: अरे तो ये छोड़ क्यों नहीं देती बेटा, होटलों में डांस करना सच में अच्छा नहीं है।
3: हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, एक यही हुनर है मेरे पास। पापा तो कुछ काम नहीं करते, थोड़े दिन कहीं नौकरी कर लेते हैं बस, और फिर छोड़ देते हैं। मुझे फिर डांस करना पड़ता है क्योंकि इससे मुझे कुछ रुपये मिल जाते हैं, इसी से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारी, साथ में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है किसी तरह।
2: देखो बेटा, मैं बात करूं क्या तुम्हारे पापा से? मैं समझाती हूँ उसे।
3: अरे नहीं नहीं आंटी, आप बुरी बन जाओगी, आपको ही भला बुरा कहने लगेंगे पापा।
2: अरे कहने दे बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझाने से कुछ असर उन पर हो जाए तो मैं उनकी खरी खोटी सुनने को भी तैयार हूँ। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पति बहुत पहले गुजर गए, बेटा किसी कंपनी में मैनेजर है। जिंदगी हमारी ठीक ठाक ही चल रही है, पर तुम्हारे दुख ने मुझे और दुखी कर दिया बेटा।
3: अरे नहीं आंटी, आप दिल पर मत लो, मेरा तो ये सब रोज का है, माँ नहीं है ना, माँ होती तो।
2: अरे अरे मत रो बेटा, मत रो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। बुरे दिन सदा नहीं रहते हैं, मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। ले पानी पी ले, ठीक है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तू यहीं आराम कर, बैठ आराम से। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सुशील है, अपने दम पर काम करती है, घर चलाती है। आप इस तरह हमेशा शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं भाई साहब? आखिर वो आपकी बेटी है।
1: देखो मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। अरे ये डांसर है, होटलों में नाचती है गाती है, जो मुझे पसंद नहीं है बस।
2: अरे तो आप काम करना चालू कर दीजिए ना भाई साहब, उसको बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: मैं काम? मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे जाओ यहाँ से, उपदेश देने चली आई मुझे, तुम अपने घर रख लो उसे, ऐसा है तो चले आए यहाँ पे उपदेश देने।
2: ममता मेरी बात सुन बेटा।
3: हाँ।
2: तुम मेरी एक सलाह मानोगी?
3: हाँ।
2: तुम होटलों में डांस करने के बजाय डांस क्लास चलाना शुरू कर दो, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और नाम भी खराब नहीं होगा।
3: आंटी आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ।
2: हाँ बेटा ऐसा ही करो तुम। देख बेटा अमन।
4: हाँ।
2: पड़ोस में ममता नाम की लड़की रहती है, बड़ी भली है, डांस कर अपनी जीविका चलाती है। माँ नहीं है बेचारी की और बाप उसका शराबी है, तू उसे एक बार देख लेता तो।
4: माँ मैंने उसे देखा है, सुंदर भी है पर हमेशा उसका सिर नीचे रहता है।
2: अरे क्या करे बेचारी, अपने बाप के कारण शर्मिंदा है, बाप शराब जो पीता है उसे घर से बाहर भी निकाल देता है।
4: ओह।
2: अकेली है पर बहुत अच्छी है बेटा, अब तू कहे तो उससे बात करूं, उसे माँ भी मिल जाएगी।
4: अब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है माँ।
2: भाई साहब आपकी लड़की सुधर गई है, वो अपना डांस क्लास चलाएगी और आपकी लड़की मुझे पसंद है। भाई साहब अपने लड़के के लिए उसका हाथ आपसे मांगने आई हूँ, अब मंजूर है क्या आपको?
4: क्या? अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बहन जी, मेरी बच्ची का जीवन समझ जाएगा। मुझे भी ममता पसंद है पापा जी, पर एक शर्त है, आज से आप शराब नहीं पियेंगे।
1: ठीक है मंजूर है मंजूर है। तू खुश है ना ममता?
3: हाँ पापा, माँ मिल गई मुझे, अब और क्या चाहिए।
1: हाँ बेटा।
0: माँ की ममता। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता भोरेकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ते एकता विभाग पर लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसके कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उन विभागों में से कुछ के बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग पर गौर करें। अपने नाम के अनुरूप ख्रिस्ती एकता विभाग का काम कार्तिक कलीसिया के अंदर एक सच्ची ख्रिस्ती एकता की भावना को बढ़ाना है और ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाने के लिए दूसरी कलीसियाओं एवं ख्रिस्ती समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होना है। ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाला विभाग उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है जो दूसरे ख्रिस्तीय कलीसियाओं और समुदायों के साथ भाईचारा के रिश्तों, सहयोग और धार्मिक बातचीत के द्वारा ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कूट कोच हैं और सचिव महाथमधश फ्लेबियो पाचे। अन्य कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों के साथ संबंधों को दो अनुभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, पूर्वी अनुभाग और पश्चिमी अनुभाग। पूर्वी अनुभाग बिजेंटाइन परंपरा की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं और पूर्वी रीति की

वे सचिवालय ने महासभा के सामने ख्रिस्ती एकता, गैर ख्रिस्ती धर्मों और धार्मिक आजादी पर दस्तावेज तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत भी किए और धर्म सैद्धांतिक कमीशन के साथ मिलकर दिव्य प्रकाशना पर धर्म सिद्धांत का संविधान प्रस्तुत किया। 1966 में वैटिकन द्वितीय महासभा समाप्त होने के बाद संत पापा पॉल छठवें ने ख्रिस्ती एकता के सचिवालय को वैटिकन की स्थायी निकाय के रूप में मान्यता दी। उसी साल कलीसिया के विश्व परिषद एवं ख्रिस्ती एकता के सचिवालय ने मिलकर पहली बार ख्रिस्ती एकता सप्ताह के लिए प्रार्थना तैयार करने का फैसला किया। 1988 में प्रेरित संविधान पास्टर बोनस के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सचिवालय को ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए परमधम पीठे परिषद में बदल दिया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के साथ संत पापा फ्रांसिस ने इसका नाम बदलकर ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग कर दिया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम में बताया गया है, विभाग का काम काते कलीसिया के अंदर और दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ रिश्तों में ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाना है। विभाग द्वितीय वैटिकन महासभा एवं महासभा के बाद ख्रिस्ती एकता पर संत पापाओं की धर्म शिक्षाओं को लागू करती है और ख्रिस्ती एकता की गतिविधियों को निर्देशित, समन्वित एवं विकसित करने के लिए उनकी सही व्याख्या सुनिश्चित करती है। यह ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह रोम में परमाध्यक्षीय कार्यालय के दूसरे संस्थानों, वैटिकन से जुड़े कार्यालयों और दूसरी कलीसियाओं तथा कलीसियाई समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता प्रयासों को समन्वित करती है। विभाग दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ संबंध स्थापित करती और पहले पोप से सवाल पूछती और एकता को बढ़ावा देने के लिए ई शास्त्रीय बातचीत एवं चर्चा को बढ़ावा देती है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न ख्रिस्ती एकता सभाओं में भाग लेने के लिए ई शास्त्रीय वार्ता के कार्तिक सदस्यों, पर्यवेक्षकों और प्रतिनिधियों को चुने और कार्तिक कलीसिया की महत्वपूर्ण सभाओं एवं कार्यक्रमों में दूसरी कलीसियाओं और समुदाय के पर्यवेक्षकों या प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। विभाग में यहूदी धर्म के साथ धार्मिक संबंधों के लिए कमीशन भी शामिल है, जिससे कैथोलिक एवं यहूदियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। कार्डिनल कोच याद करते हैं कि पिछले 60 सालों में ख्रिस्तियों के बीच वार्ता ने हमें इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करने में मदद की है। उदाहरण के लिए वे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ ख्रिस्त शास्त्र की घोषणा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने 1500 साल के विवाद को खत्म कर दिया। सबसे खास बात यह है कि ख्रिस्ते अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि ख्रिस्त में भाई बहन मानते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2022 में ख्रिस्ती एकता महासभा में अपना भाषण देते हुए आगे बढ़ने और साथ चलने की अपील की थी। यह सच है कि ख्रिस्ती एकता काम बहुत जरूरी है और हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम एकता के रास्ते पर चलने का इंतजार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये शास्त्री एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते। पोप फ्रांसिस ने आगे कहा, एक महान ऑर्थोडॉक्स ये शास्त्री ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें पता है कि ये शास्त्री कब तक सहमत होंगे। जवाब में उन्होंने कहा, अंतिम न्याय के एक दिन बाद, अर्थात पूर्ण सहमति मुश्किल है। लेकिन इस बीच संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम भाइयों की तरह चलें, मिलकर प्रार्थना करें, उदारता के कार्य करें, सच्चाई की तलाश करें और यह भाईचारा सभी के लिए है। इस तरह ख्रिस्ती एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस तरह ख्रिस्ती एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने का प्रोत्साहन देता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ती एकता विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की ममता। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, परिवार में बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, पर कभी कभी पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार की देखरेख बच्चों की परवरिश का भार माता के जिम्मे आता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। नौकरी ना मिलने पर वो घर घर बर्तन मांझकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती और परिवार चलाती हैं। बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। उनमें दुख सहने और धैर्य रखने की शक्ति होती है। वे माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। पर अगर परिवार में माता की अचानक मृत्यु हो जाए तो साधारणतः बच्चों के जीवन में माता का स्थान पिता नहीं ले पाता है। अगर संयुक्त परिवार हो और घर में दादा दादी हो तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, अन्यथा पिता अपने बच्चों के लिए नई माँ ले आता है। हाँ, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो बखूबी माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। पर अगर पिता को शराब की लत लग जाए, नौकरी ना हो, ऐसे में बच्चों की परवरिश की आप कल्पना कर सकते हैं। आज की नाटिका में बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित ममता को अपनी पड़ोसन अमन की माँ का प्यार और मार्गदर्शन मिल जाए तो ममता जैसी अनेकों युवतियों की जिंदगी संवर जाएगी। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका माँ की ममता।
1: रो क्या रही है, चला चलिए यहाँ से, आना मत दोबारा यहाँ। घर की इज्जत नीलाम कर रही है, तुझे खाने को नहीं मिलता है? इंसान दो रोटी ही खाता है, अमीर गरीब सब यही खाते हैं, दाल रोटी। फिर भी लोगों को और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
2: अरे क्या हुआ बेटी, मैं 2-3 दिन से बाहर खड़े होकर तुम्हें रोते हुए देखती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
3: आंटी, आप नहीं आई हो ना इस फ्लैट में, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रोती हूँ।
2: अरे पर बताओ तो सही, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा, बड़ी तकलीफ होती है मुझे।
3: आंटी, इस फ्लैट में पहले जो स्टूडेंट रहते थे ना, वो इसी कारण से चले गए।
2: हाँ हाँ, रो मत बेटा, आराम से।
3: पापा की वजह से रोज शराब पीकर आते हैं और चिल्ला चोट करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते। अब आप ही बताओ आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ?
2: रो मत बेटा, रो मत। एक बात बता, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा, घर में और कोई है कि नहीं?
3: नहीं आंटी, घर में और कोई नहीं है, बस पापा और मैं। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, उन्हें कैंसर था तब मैं बहुत छोटी थी। बस बस माँ की धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में है आंटी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये देखिए मेरी माँ की तस्वीर, बहुत प्यारी थी मेरी माँ।
2: हाँ बेटा, माँ बड़ी प्यारी होती है, पर तुम्हारे पापा को तुमसे क्या परेशानी है, तुम्हें तो खूब प्यार से रखना चाहिए उन्हें।
3: परेशानी ये है आंटी कि मैं डांस करती हूँ और उन्हें मेरा नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं होटल में डांस करती हूँ।
2: अरे तो ये छोड़ क्यों नहीं देती बेटा, होटलों में डांस करना सच में अच्छा नहीं है।
3: हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, एक यही हुनर है मेरे पास। पापा तो कुछ काम नहीं करते, थोड़े दिन कहीं नौकरी कर लेते हैं बस, और फिर छोड़ देते हैं। मुझे फिर डांस करना पड़ता है क्योंकि इससे मुझे कुछ रुपये मिल जाते हैं, इसी से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारी, साथ में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है किसी तरह।
2: देखो बेटा, मैं बात करूं क्या तुम्हारे पापा से? मैं समझाती हूँ उसे।
3: अरे नहीं नहीं आंटी, आप बुरी बन जाओगी, आपको ही भला बुरा कहने लगेंगे पापा।
2: अरे कहने दे बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझाने से कुछ असर उन पर हो जाए तो मैं उनकी खरी खोटी सुनने को भी तैयार हूँ। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पति बहुत पहले गुजर गए, बेटा किसी कंपनी में मैनेजर है। जिंदगी हमारी ठीक ठाक ही चल रही है, पर तुम्हारे दुख ने मुझे और दुखी कर दिया बेटा।
3: अरे नहीं आंटी, आप दिल पर मत लो, मेरा तो ये सब रोज का है, माँ नहीं है ना, माँ होती तो।
2: अरे अरे मत रो बेटा, मत रो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। बुरे दिन सदा नहीं रहते हैं, मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। ले पानी पी ले, ठीक है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तू यहीं आराम कर, बैठ आराम से। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सुशील है, अपने दम पर काम करती है, घर चलाती है। आप इस तरह हमेशा शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं भाई साहब? आखिर वो आपकी बेटी है।
1: देखो मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। अरे ये डांसर है, होटलों में नाचती है गाती है, जो मुझे पसंद नहीं है बस।
2: अरे तो आप काम करना चालू कर दीजिए ना भाई साहब, उसको बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: मैं काम? मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे जाओ यहाँ से, उपदेश देने चली आई मुझे, तुम अपने घर रख लो उसे, ऐसा है तो चले आए यहाँ पे उपदेश देने।
2: ममता मेरी बात सुन बेटा।
3: हाँ।
2: तुम मेरी एक सलाह मानोगी?
3: हाँ।
2: तुम होटलों में डांस करने के बजाय डांस क्लास चलाना शुरू कर दो, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और नाम भी खराब नहीं होगा।
3: आंटी आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ।
2: हाँ बेटा ऐसा ही करो तुम। देख बेटा अमन,
4: हाँ?
2: पड़ोस में ममता नाम की लड़की रहती है, बड़ी भली है, डांस कर अपनी जीविका चलाती है। माँ नहीं है बेचारे की और बाप उसका शराबी है, तू उसे एक बार देख लेता तो।
4: माँ मैंने उसे देखा है, सुंदर भी है पर हमेशा उसका सिर नीचे रहता है।
2: अरे क्या करे बेचारी, अपने बाप के कारण शर्मिंदा है, बाप शराब जो पीता है उसे घर से बाहर भी निकाल देता है।
4: ओह
2: अकेली है पर बहुत अच्छी है बेटा, अब तू कहे तो उससे बात करूं, उसे माँ भी मिल जाएगी।
4: अब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है माँ।
2: भाई साहब आपकी लड़की सुधर गई है, वो अपना डांस क्लास चलाएगी और आपकी लड़की मुझे पसंद है। भाई साहब अपने लड़के के लिए उसका हाथ आपसे मांगने आई हूँ, अब मंजूर है क्या आपको?
4: क्या? अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बहन जी, मेरी बच्ची का जीवन समझ जाएगा।
5: मुझे भी ममता पसंद है पापा जी, पर एक शर्त है, आज से आप शराब नहीं पियेंगे।
1: ठीक है मंजूर है मंजूर है। तू खुश है ना ममता?
3: हाँ पापा, माँ मिल गई मुझे, अब और क्या चाहिए।
1: हाँ बेटा।
0: माँ की ममता। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता भोरेकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: वैटिकन में स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने विश्वासों को याद दिलाया कि यीशु हमें हमेशा और बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारे लिए उनका प्यार हमें दूसरों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 10 मई को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
0: आज के सुसमाचार पाठ में हमने उन शब्दों को सुना जिन्हें यीशु ने अंतिम ब्यारे के दौरान शिष्यों से कहे थे, जब उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने प्यार की जीवित अभिव्यक्ति में बदल दी। ख्रिस्त कहते हैं,
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पोप ने कहा कि यह बात हमें इस गलत फहमी से मुक्त करती है कि हमसे प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, मानो कि हमारा धर्मी होना ईश्वर के प्यार के लिए जरूरी शर्त हो। इसके बदले उन्होंने कहा, ईश्वर का प्यार हमारे धर्मी होने की शर्त है। हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन तभी वास्तव में करते हैं जब हम हमारे लिए उनके प्यार को पहचानते हैं, जैसा कि ख्रिस्त दुनिया को दिखाते हैं। इस तरह यीशु के शब्द एक निमंत्रण है कि हम उनसे संबंध जोड़ें, ना कि भेद छिपाना या संदेश पर चेतावनी देना। यही कारण है कि प्रभु हमें एक दूसरे से वैसा ही प्यार करने की आज्ञा देते हैं जैसे उन्होंने हमसे किया है। यह यीशु का प्यार है जो हमारे अंदर प्यार को बढ़ाता है। मसीह खुद सच्चे प्यार के पैमाने हैं, वह प्यार जो हमेशा सच्चा, पवित्र और बिना शर्त के होता है, वह प्यार जो ना तो लेकिन जानता और ना ही शायद, वह प्यार जो बिना कुछ चाहे देता है, वह प्यार जो बदले में कुछ लिए बिना जीवन देता है। क्योंकि ईश्वर ने हमसे पहले प्यार किया है, हम भी प्यार कर सकते हैं, और जब हम सचमुच ईश्वर से प्यार करते हैं, एक दूसरे से भी प्यार कर सकते हैं। यह खुद जीवन है, जिस प्रकार केवल वे ही जी सकते हैं जिन्हें जीवन मिला है, वैसे ही सिर्फ वे ही प्यार कर सकते हैं जिन्हें प्यार मिला है। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें झूठे प्यार से चंगा करता है। यह आध्यात्मिक जीवन शैली है जो मुक्ति का रास्ता है। यह खासकर इसलिए है क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं कि प्रभु हमें जीवन की परीक्षाओं में अकेले नहीं छोड़ते। वे हमें सहायक यानी मध्यस्थ सच्चाई की आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं, जो एक ऐसा वरदान है जिसे दुनिया तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि वह बुराई में रहती है, गरीबों पर जुल्म करती, दुर्बलों को अलग करती और बेगुनाह लोगों को मारती है। दूसरी ओर जो लोग सभी के लिए प्रभु के प्यार का प्रत्युत्तर देते हैं, वे पवित्र आत्मा में एक ऐसा साथी पाएंगे जो कभी कमजोर नहीं होता। यीशु कहते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसलिए हम ईश्वर की गवाही दे सकते हैं जो हमेशा और हर जगह प्यार है। प्यार मानव के दिमाग का विचार नहीं है, बल्कि दिव्य जीवन की सच्चाई है जिसके जरिए सभी चीजें कुछ नहीं से बनाई गई और मौत से बचाई गई। संत पापा ने कहा, हमें सच्चा और अमर प्यार देकर यीशु हमारे साथ प्यारे बेटे के रूप में अपनी पहचान साझा करते हैं। मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जीवन का यह सब कुछ शामिल करने वाला मिलन आरोप लगाने वाले को गलत साबित करता है, सहायक के दुश्मन को जो हमारे बचाने वाले का विरोध करता। वास्तव में जहाँ पवित्र आत्मा सच्चाई की ताकत है, वहीं आरोप लगाने वाला झूठ का पिता है जो मानव को ईश्वर के खिलाफ और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यीशु जो हमें बुराई से बचाकर और कलीसिया में भाई बहनों के रूप में एक करते हैं, अभियोग लगाने वाले का काम बिल्कुल उल्टा है। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore.
0: प्यारे मित्रों, इस वरदान के लिए कृतज्ञता से भरकर आइए हम अपने आप को दिव्य प्रेम की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सुपोर्त करें। इतना कहकर संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: रेजीना चेली लेतारे अल्लेलुया Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और उनके लिए चिंता जताई। उन्होंने साहेल में हुए आतंकी हमलों से पीड़ित लोगों के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा,
1: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
0: मुझे साहेल इलाके में खासकर चाड और

0: शुभकामनाएं देता हूँ और पूरी प्यारी कोप्टिक कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ, इस उम्मीद में कि हमारी दोस्ती का सफर हमें मसीह में पूर्ण एकता की ओर ले जाएगा, जिन्होंने हमें मित्र कहा है। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने इटली के अलग अलग शहरों से आए येसु के पौत्र हृदय के गार्ड्स ऑफ ऑनर दल तथा रेडियो मरिया परिवार से जुड़े सुसमाचार के स्वयंसेवकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाले कॉमन इटालिया स्वयंसेवक संघ का अभिवादन किया।
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
0: उसके बाद संत पापा ने कैनरी द्वीप के लोगों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया, जिसने होंडियूस क्रूज जहाज को हंटा वायरस के मरीजों के साथ बंदरगाह में ठहरने की इजाजत दी। और अपनी आगामी यात्रा की याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अगले महीने द्वीप के अपने दौरे के समय मैं आपसे मिल पाऊंगा। और अंत में माताओं के विश्व दिवस की याद करते हुए संत पापा ने कहा, आज सभी माताओं के लिए एक खास बात कहना चाहूंगा। येसु की माँ और हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हर माँ के लिए स्नेह एवं कृतज्ञता की भावना के साथ प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए जो सबसे मुश्किल हालात में जी रहे हैं।
1: Grazie, che Dio vi benedica.
0: धन्यवाद, ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में सूडान गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कामिल एल तैयब इदरीस अब्देल हाफिज से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य सचिवालय में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन और वाटिकन के राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के उप सचिव मोनसिन्योर मिहाइंटा ब्लाज से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य सचिवालय में बातचीत अच्छी रही और इसमें वाटिकन और सूडान के बीच अच्छे संबंधों को स्वीकार किया गया। इसमें बताया गया कि चर्चा देश की भलाई के लिए स्थानीय कलीसिया के महत्वपूर्ण योगदान और पिछले 3 सालों से युद्ध से जूझ रहे सूडान में चल रहे गंभीर संकट पर केंद्रित थी। इस बारे में बयान में आगे कहा गया कि युद्ध विराम करने, लोगों की मदद करने और सूडान के सभी पक्षों के बीच ईमानदारी से बातचीत शुरू करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया गया, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना और मिलकर शांति बनाना है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग और अंतरधार्मिक अध्ययन के लिए रॉयल संस्थान की

आठवीं संगोष्ठी के प्रतिभागियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि इस साल आपने जो विषय चुना है, आज के समय में मानवीय दया और हमदर्दी, वह आज की दुनिया के लिए खास तौर पर सही समय पर है। संत पापा ने कहा कि ये मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी धार्मिक परंपराओं के जरूरी पहलू हैं और असल में इंसानी जिंदगी जीने के मायने भी हैं। मुस्लिम परंपरा में दया राफा को ईश्वर की तरफ से विश्वासियों के दिलों में दिए गए एक उपहार के तौर पर दया से जोड़ा गया है और दिव्य नामों में से एक अल रऊफ हमें याद दिलाता है कि दया की शुरुआत हमेशा खुद ईश्वर से होती है। इसी तरह ख्रिस्तीय परंपरा में पवित्र ग्रंथ एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो दुख से बेपरवाह नहीं रहते, बल्कि मूसा से कहते हैं, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। यीशु ख्रिस्त में यह दिव्य दया दिखाई गई है और महसूस की गई है। ईश्वर देखने और सुनने से आगे बढ़कर दया का जीता जागता रूप बन जाते हैं और हमारा मानव स्वभाव अपना लेते हैं। यीशु के उदाहरण पर चलते हुए ख्रिस्तीय दया दूसरों के साथ, खासकर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ दुख सहना बन जाती है। इसी वजह से गरीबों के लिए प्यार, चाहे उनकी गरीबी किसी भी रूप में हो, ईश्वर के दिल के प्रति विश्वस्त कलीसिया की सुसमाचारी पहचान है। हमारी परंपराओं के लिए इंसानी दया और हमदर्दी कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का बुलावा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी अच्छाई को दिखाएं। संत पापा ने आज के समय में दया और हमदर्दी खत्म होने के खतरे की बात की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की ने हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा है, लेकिन इससे बेपरवाही भी हो सकती है। दूसरों की मुश्किलों की तस्वीरों और वीडियो का लगातार आना हमारे दिलों को हिलाने के बजाय उसमें उन्हें उदास कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने 8 जुलाई 2013 को लंपेदूसा में अपने प्रवचन में चेतावनी दी थी कि हमें दूसरों की तकलीफ की आदत हो गई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संत पापा लियो ने कहा कि इस तरह की बेपरवाही हमारे समय की सबसे गंभीर आध्यात्मिक चुनौतियों में से एक बनती जा रही है। ऐसे में ख्रिस्तीय और मुसलमान अपनी अपनी परंपराओं की प्रचुरता से प्रेरणा लेते हुए एक सामान्य मिशन के लिए बुलाए गए हैं, जहां इंसानियत ठंडी पड़ गई है, वहां उसे फिर से जिंदा करना, जो लोग परेशान हैं उन्हें आवाज देना और बेपरवाही को एकता में बदलना। दया और हमदर्दी हमारे जरिया हो सकते हैं और उसमें दूसरों की गरिमा वापस लाने की ताकत होती है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में वाटिकन वेदशाला संस्थान के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की। उनका सहृदय स्वागत करते हुए उनके काम और उदार समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि यह वाटिकन और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में वाटिकन सिटी स्टेट का एक प्रिय संस्थान है। संत पापा ने कहा कि 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने वाटिकन वेदशाला को शुरू किया। हर कोई साफ तौर पर देख सके कि कलीसिया और उसके धर्माधिकारी सच्चे और ठोस विज्ञान के खिलाफ नहीं हैं, चाहे वह इंसानी हो या दैवी, बल्कि वे उसे अपनाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और पूरी लगन से उसे प्रोत्साहित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि आज विज्ञान और धर्म दोनों को एक अलग और शायद ज्यादा खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग जो वस्तुनिष्ठ सच के होने को नकारते हैं, हमारी दुनिया में बहुत से लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि विज्ञान और कलीसिया दोनों स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि हम अपने ग्रह की देखभाल और इस पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी लेते हैं, खासकर सबसे कमजोर लोगों की, जिनकी जिंदगी लोगों और प्रकृति दोनों के बेतहाशा इस्तेमाल से खतरे में है। यही वजह है कि कलीसिया का सख्त ईमानदार विज्ञान को अपनाना न सिर्फ कीमती है, बल्कि जरूरी भी है।
उधर ताइक्वांडो मानवीय संस्थान 8 युवा एथलीटों को इस जून में रोम में होने वाले 2026 वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने का मौका दे रहा है। 4 से 7 जून तक रोम 2026 विश्व ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। इसमें शामिल होने वालों में जॉर्डन के अराजक रिफ्यूजी कैंप से लगभग 10 साल के 8 युवा एथलीट होंगे। इतालवी ताइक्वांडो संस्थान के समर्थन से ताइक्वांडो मानवीय संस्थान की एक पहल की वजह से इन बच्चों को अपनी जिंदगी में पहली बार रिफ्यूजी कैंप छोड़ने का मौका मिलेगा। रोम में रहने के दौरान एथलीट बच्चों को संत पापा लियो 14वें से मिलने का अवसर मिलेगा और शहर और उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: वैटिकन में स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने विश्वासों को याद दिलाया कि यीशु हमें हमेशा और बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारे लिए उनका प्यार हमें दूसरों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 10 मई को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
0: आज के सुसमाचार पाठ में हमने उन शब्दों को सुना जिन्हें यीशु ने अंतिम ब्यारी के दौरान शिष्यों से कहे थे, जब उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने प्यार की जीवित अभिव्यक्ति में बदल दी। ख्रिस्त कहते हैं,
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पोप ने कहा कि यह बात हमें इस गलत फहमी से मुक्त करती है कि हमसे प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, मानो कि हमारा धर्मी होना ईश्वर के प्यार के लिए जरूरी शर्त हो। इसके बदले उन्होंने कहा, ईश्वर का प्यार हमारे धर्मी होने की शर्त है। हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन तभी वास्तव में करते हैं जब हम हमारे लिए उनके प्यार को पहचानते हैं, जैसा कि ख्रिस्त दुनिया को दिखाते हैं। इस तरह यीशु के शब्द एक निमंत्रण है कि हम उनसे संबंध जोड़ें, ना कि भेद छिपाना या संदेश पर चेतावनी देना। यही कारण है कि प्रभु हमें एक दूसरे से वैसा ही प्यार करने की आज्ञा देते हैं जैसे उन्होंने हमसे किया है। यह यीशु का प्यार है जो हमारे अंदर प्यार को बढ़ाता है। मसीह खुद सच्चे प्यार के पैमाने हैं, वह प्यार जो हमेशा सच्चा, पवित्र और बिना शर्त के होता है, वह प्यार जो ना तो लेकिन जानता और ना ही शायद, वह प्यार जो बिना कुछ चाहे देता है, वह प्यार जो बदले में कुछ लिए बिना जीवन देता है। क्योंकि ईश्वर ने हमसे पहले प्यार किया है, हम भी प्यार कर सकते हैं, और जब हम सचमुच ईश्वर से प्यार करते हैं, एक दूसरे से भी प्यार कर सकते हैं। यह खुद जीवन है, जिस प्रकार केवल वे ही जी सकते हैं जिन्हें जीवन मिला है, वैसे ही सिर्फ वे ही प्यार कर सकते हैं जिन्हें प्यार मिला है। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें झूठे प्यार से चंगा करता है। यह आध्यात्मिक जीवन शैली है जो मुक्ति का रास्ता है। यह खासकर इसलिए है क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं कि प्रभु हमें जीवन की परीक्षाओं में अकेले नहीं छोड़ते। वे हमें सहायक यानी मध्यस्थ सच्चाई की आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं, जो एक ऐसा वरदान है जिसे दुनिया तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि वह बुराई में रहती है, गरीबों पर जुल्म करती, दुर्बलों को अलग करती और बेगुनाह लोगों को मारती है। दूसरी ओर जो लोग सभी के लिए प्रभु के प्यार का प्रत्युत्तर देते हैं, वे पवित्र आत्मा में एक ऐसा साथी पाएंगे जो कभी कमजोर नहीं होता। यीशु कहते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसलिए हम ईश्वर की गवाही दे सकते हैं जो हमेशा और हर जगह प्यार है। प्यार मानव के दिमाग का विचार नहीं है, बल्कि दिव्य जीवन की सच्चाई है जिसके जरिए सभी चीजें कुछ नहीं से बनाई गईं और मौत से बचाई गईं। संत पापा ने कहा, हमें सच्चा और अमर प्यार देकर यीशु हमारे साथ प्यारे बेटे के रूप में अपनी पहचान साझा करते हैं। मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जीवन का यह सब कुछ शामिल करने वाला मिलन आरोप लगाने वाले को गलत साबित करता है, सहायक के दुश्मन को जो हमारे बचाने वाले का विरोध करता। वास्तव में जहाँ पवित्र आत्मा सच्चाई की ताकत है, वहीं आरोप लगाने वाला झूठ का पिता है जो मानव को ईश्वर के खिलाफ और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यीशु जो हमें बुराई से बचाकर और कलीसिया में भाई बहनों के रूप में एक करते हैं, अभियोग लगाने वाले का काम बिल्कुल उल्टा है। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: प्यारे मित्रों, इस वरदान के लिए कृतज्ञता से भरकर आइए हम अपने आप को दिव्य प्रेम की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट करें। इतना कहकर संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: रेजीना चेली लेतारे अल्लेलुया Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और उनके लिए चिंता जताई। उन्होंने साहेल में हुए आतंकी हमलों से पीड़ित लोगों के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा,
1: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
0: मुझे साहेल इलाके में खासकर चाड और माली में जहां हाल ही में आतंकी हमले हुए हैं हिंसा बढ़ने की खबर सुनकर चिंता हो रही है। मैं पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थनाओं और पीड़ित लोगों के साथ अपने सामीप्य का भरोसा दिलाता हूं। मैं हर तरह की हिंसा खत्म होने की उम्मीद करता हूं और उस प्यारी भूमि पर शांति एवं विकास के लिए हर कोशिश को बढ़ावा देता हूँ। उसके बाद कोप्टिक कार्तिक मातृ दिवस की याद कर पोप ने कहा, हर साल 10 मई को कोप्टिक कार्तिक मातृ दिवस मनाया जाता है। मैं परमाध्यक्ष तवाद्रोस द्वितीय को भाईचारे की शुभकामनाएं देता हूँ और पूरी प्यारी कोप्टिक कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ, इस उम्मीद में कि हमारी दोस्ती का सफर हमें मसीह में पूर्ण एकता की ओर ले जाएगा जिन्होंने हमें मित्र कहा है। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने इटली के अलग अलग शहरों से आए येसु के पौत्र हृदय के गार्ड्स ऑफ ऑनर दल तथा रेडियो मरिया परिवार से जुड़े सुसमाचार के स्वयं सेवकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाले कॉमन इटालिया स्वयं सेवक संघ का अभिवादन किया।
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
0: उसके बाद संत पापा ने कैनरी द्वीप के लोगों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया जिसने होंडियूस क्रूज जहाज को हंटा वायरस के मरीजों के साथ बंदरगाह में ठहरने की इजाजत दी और अपनी आगामी यात्रा की याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अगले महीने द्वीप के अपने दौरे के समय मैं आपसे मिल पाऊंगा। और अंत में माताओं के विश्व दिवस की याद करते हुए संत पापा ने कहा, आज सभी माताओं के लिए एक खास बात कहना चाहूँगा। येसु की माँ और हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हर माँ के लिए स्नेह एवं कृतज्ञता की भावना के साथ प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए जो सबसे मुश्किल हालात में जी रहे हैं।
1: Grazie, che Dio vi benedica.
0: धन्यवाद, ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में सूडान गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कामिल एल तैयब इदरीस अब्देल हाफिज से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य सचिवालय में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन और वाटिकन के राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के उप सचिव मोनसिन्योर मिहाइंटा ब्लाच से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य सचिवालय में बातचीत अच्छी रही और इसमें वाटिकन और सूडान के बीच अच्छे संबंधों को स्वीकार किया गया। इसमें बताया गया कि चर्चा देश की भलाई के लिए स्थानीय कलीसिया के महत्वपूर्ण योगदान और पिछले 3 सालों से युद्ध से जूझ रहे सूडान में चल रहे गंभीर संकट पर केंद्रित थी। इस बारे में बयान में आगे कहा गया कि युद्ध विराम करने, लोगों की मदद करने और सूडान के सभी पक्षों के बीच ईमानदारी से बातचीत शुरू करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया गया, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना और मिलकर शांति बनाना है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग और अंतरधार्मिक अध्ययन के लिए रॉयल संस्थान की 8वीं संगोष्ठी के प्रतिभागियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि इस साल आपने जो विषय चुना है, आज के समय में मानवीय दया और हमदर्दी, वह आज की दुनिया के लिए खास तौर पर सही समय पर है। संत पापा ने कहा कि ये मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी धार्मिक परंपराओं के जरूरी पहलू हैं और असल में इंसानी जिंदगी जीने के मायने भी हैं। मुस्लिम परंपरा में दया राफा को ईश्वर की तरफ से विश्वासियों के दिलों में दिए गए एक उपहार के तौर पर दया से जोड़ा गया है और दिव्य नामों में से एक अल रऊफ हमें याद दिलाता है कि दया की शुरुआत हमेशा खुद ईश्वर से होती है। इसी तरह ख्रिस्तीय परंपरा में पवित्र ग्रंथ एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो दुख से बेपरवाह नहीं रहते, बल्कि मूसा से कहते हैं, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। यीशु ख्रिस्त में यह दिव्य दया दिखाई गई है और महसूस की गई है। ईश्वर देखने और सुनने से आगे बढ़कर दया का जीता जागता रूप बन जाते हैं और हमारा मानव स्वभाव अपना लेते हैं। यीशु के उदाहरण पर चलते हुए ख्रिस्तीय दया दूसरों के साथ, खासकर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ दुख सहना बन जाती है। इसी वजह से गरीबों के लिए प्यार, चाहे उनकी गरीबी किसी भी रूप में हो, ईश्वर के दिल के प्रति विश्वस्त कलीसिया की सुसमाचारी पहचान है। हमारी परंपराओं के लिए इंसानी दया और हमदर्दी कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का बुलावा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी अच्छाई को दिखाएं। संत पापा ने आज के समय में दया और हमदर्दी खत्म होने के खतरे की बात की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की ने हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा है, लेकिन इससे बेपरवाही भी हो सकती है। दूसरों की मुश्किलों की तस्वीरों और वीडियो का लगातार आना हमारे दिलों को हिलाने के बजाय उसमें उन्हें उदास कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने 8 जुलाई 2013 को लंपेदूसा में अपने प्रवचन में चेतावनी दी थी कि हमें दूसरों की तकलीफ की आदत हो गई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संत पापा लियो ने कहा कि इस तरह की बेपरवाही हमारे समय की सबसे गंभीर आध्यात्मिक चुनौतियों में से एक बनती जा रही है। ऐसे में ख्रिस्तीय और मुसलमान अपनी अपनी परंपराओं की प्रचुरता से प्रेरणा लेते हुए एक सामान्य मिशन के लिए बुलाए गए हैं, जहां इंसानियत ठंडी पड़ गई है, वहां उसे फिर से जिंदा करना, जो लोग परेशान हैं उन्हें आवाज देना और बेपरवाही को एकता में बदलना। दया और हमदर्दी हमारे जरिया हो सकते हैं और उसमें दूसरों की गरिमा वापस लाने की ताकत होती है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में वाटिकन वेदशाला संस्थान के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की।
उनका सहृदय स्वागत करते हुए उनके काम और उदार समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि यह वाटिकन और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में वाटिकन सिटी स्टेट का एक प्रिय संस्थान है। संत पापा ने कहा कि 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने वाटिकन वेदशाला को शुरू किया। हर कोई साफ तौर पर देख सके कि कलीसिया और उसके धर्माधिकारी सच्चे और ठोस विज्ञान के खिलाफ नहीं हैं, चाहे वह इंसानी हो या दैवी, बल्कि वे उसे अपनाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और पूरी लगन से उसे प्रोत्साहित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि आज विज्ञान और धर्म दोनों को एक अलग और शायद ज्यादा खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग जो वस्तुनिष्ठ सच के होने को नकारते हैं, हमारी दुनिया में बहुत से लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि विज्ञान और कलीसिया दोनों स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि हम अपने ग्रह की देखभाल और इस पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी लेते हैं, खासकर सबसे कमजोर लोगों की, जिनकी जिंदगी लोगों और प्रकृति दोनों के बेतहाशा इस्तेमाल से खतरे में है। यही वजह है कि कलीसिया का सख्त ईमानदार विज्ञान को अपनाना न सिर्फ कीमती है बल्कि जरूरी भी है। उधर ताइक्वांडो मानवीय संस्थान 8 युवा एथलीटों को इस जून में रोम में होने वाले 2026 वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने का मौका दे रहा है। 4 से 7 जून तक रोम 2026 विश्व ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। इसमें शामिल होने वालों में जॉर्डन के अराजक रिफ्यूजी कैंप से लगभग 10 साल के 8 युवा एथलीट होंगे। इतालवी ताइक्वांडो संस्थान के समर्थन से ताइक्वांडो मानवीय संस्थान की एक पहल की वजह से इन बच्चों को अपनी जिंदगी में पहली बार रिफ्यूजी कैंप छोड़ने का मौका मिलेगा। रोम में रहने के दौरान एथलीट बच्चों को संत पापा लियो 14वें से मिलने का अवसर मिलेगा और शहर और उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

gatte, diligenter